तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850-1246 9850-1254 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850-1246 9850-5504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

0: श्रावण महिनाको प्रत्येक सोमबार गाईघाट पोखरादेखि श्री केदारेश्वर मणि बोलबम धामसम्म हुने बोलबम जलयात्रामा सहभागी बनौ, अक्षय पुण्य लाभ कमाऊ।
1: जल उठाउने स्थान पोखरा एक गाईघाट बिहान 7 बजे जलार्पण श्री केदारेश्वर महादेव बोलबम धाम लेक साइड पोखरा।
0: अनुरोधक श्री केदारेश्वर महादेव मणि सेवा आश्रम समिति बोलबम धाम बैदाम।

तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856120046 9852510504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

0: बाकीलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार चिब्बे ढुंगा पोखरा सम्पूर्ण किसिम का खेलकूद का सामग्री होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिने ठाउँ विभिन्न देश का जर्सी सुपथ मूल्य में पाइन्छ आफूलाई मन पर्ने देश को जर्सी का लागि सम्झन होस् बाकीलाल स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर मोहन कुवर संपर्क 9816692983 9856552855 समझनुहोस् है बाकीलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार
1: आयो है मासु ताजा ताजा मासु

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97050 55 0557 मलसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड
1: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
2: वेस्ट सल्फर ले आयो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
1: अब सब को लगी वेब सर्फर भरपर्दो विश्वास हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंटरनेट

तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856126 9852510504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ। यदि तपाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने मनसाय बनाइरहनु भएको छ भने नागढुंगा पोखरामा रहेको नेशनल एक्सपोर्ट मेन पावर कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनुहोस्। दुबई, कतार, साउदी, मलेसिया सहित रोमानिया लगायतका युरोपियन राष्ट्रका विभिन्न कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीको सुवर्ण अवसर। कुक, किचन हेल्पर, वेटर, सेक्युरिटी गार्ड, फ्याक्ट्री वर्कर, डेलिभरी बोय, ड्राइभर, हाउसकिपिङ, हेल्पर, क्लिनर लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार जान चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्। खान बस्नको सुविधा सहित मासिक तलब न्यूनतम 40,000 देखि 1,00,000 सम्म। सम्पर्क नेशनल एक्सपोर्ट मेन पावर कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेड, नागढुङ्गा पोखरा कास्की। फोन नम्बर 0161553071, 9867812334, 9705077123, व्हाट्सएप नम्बर 9811771123।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705508 9705508 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705508 9755055007 मलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705508 9755055 07 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के सहर पोख।

0: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
1: वेस्टर्फ ल्यायो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
0: अब सब को लगी वेब सर्फर भर पर्दो विश्वास दिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस
1: कन्ट्याक्ट 0615553050 0615589848
0: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np

0: आधुनिक डिजाइन का तैयारी सुनसादी को गर गहना पाइन का साथ ही अर्डर बहुमोजन जस्तो ये बनाई
1: ए हो रही गहना बना आज दीप सुनसादी दुकान जानु नि
2: हाम्रा सेवाहरू शुद्ध सुनका आधुनिक डिजाइनका गरगहनाहरू दक्ष तथा अनुभवी कारीगरहरूद्वारा बनाइन्छ। साथै आधुनिक प्रविधिद्वारा नापतोल गरी किनबेच गरिन्छ।
0: सम्पर्क दीप सुनचादी दोकान गैरापाटन चार पोखरा प्रोप्राइटर दिपेन्द्र सुनार कान्छा। मोबाइल नम्बर 9852210050 9852170714।
3: आयो है मासु ताजा ताजा मासु।

प्रिंटिंग छपाई संबंधी सबै काम अब एकै ठाउँ ओम प्रिंट हाउस। प्रिंट हाउस। प्रिंट हाउस। ओम कंप्यूटर डिजाइनिंग एंड एडवर्टाइजिंग हाउस पोखरा 8 सिर्जना चोकमा। हाम्रा सेवाहरू विविध कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रचार प्रसार का लागि फ्ल्याक्स प्रिंट 2D 3D बोर्ड तथा बैनर प्रिंट मायाको चिनो उपहार तथा विवाह वर्तबन्ध लगायत सबै खाले उत्सव तथा कार्यक्रमको कार्ड छपाई ग्राफिक डिजाइन कलर प्रिंट तथा फोटोकपी स्टिकर कप प्रिंट टी शर्ट प्रिंट लगायत छपाई सम्बन्धी सबै काम तुरुन्तै। सम्पर्क ओम प्रिंट हाउस पोखरा 8 सिर्जना चोक। फोन नम्बर 061-576-110 प्रोप्राइटर मनोज बास्तोला 98-560-22-25 98-560-26-110। सूचना शिक्षा र मनोरञ्जन अब रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ज सँगै सफलताखबर.com मा पनि www.sofaltakhabar.com साथमा रेडियो सफलताको फेसबुक पेज रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ज पोखरा र रेडियो सफलताको युट्युब च्यानल रेडियो सफलता टिभी पनि सब्स्क्राइब गरी हामी सँगै रहनुहोला।